0: लाश तुम कुफा भी
1: बमंगा तक आम को मिन नंबुमंगा केर संसायम बाई सेरों फुकतान नंबुमाइंस फावटन सायने बुमाइंस अनोटन समास निनिन नमीच एट्रम सोफा अंड्रास अंड्रास लाव टेनिस फिजरा ना तान्या टेपे अंत चाते वामनी रोकुल त्योयों ना तमले ले फोरुन निस फंड्राइसना नारा नंद्राया ते ओटन फिटफ्टीन ले प्रेसिडेंट इस मुझांस ते ना प्रेसिडेंट फोटो में करते मोबाइल ते फिर पेरां फुट से लेसुरत ना ते ते से सेम बसुरत प्रेसिडेंट ते सान ना तो ने ने अंदो सुरत ना रा वो तो ये वेतना मेनो तुझी सुना तो उनका ये सिस्टीलो इस